0: पाड़ो तो
1: ये के तुम गज करने ने बतिल करने आ दिए
0: मा तो भाई को मैं हार के बेदो कुदेर कमी होंगे री दो
1: कुदेर कमी होंगे हम
0: और यहां तने फुल दो
1: गादया का सब नुबला या का
0: देख ही कुरी वाले नों करने गए तो ये तो कहर में ही कुरी दे मरा फिंग ये तो कशे वाने को तक गिन में हूँ निम्मा के मिस्ती बी कम को वाला रंगला दिमाग वे तो हमें में करने गए दातुर तंगे कुरी हुरी है दिमाग दिमाग को मिस्ता
2: ಶುಕ್ರಿಯಾ
0: ವರ ಪೊಡೆ.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: ती वही एफएम नौ दिए एक मेगाहर्ट्ज।
1: ती वही एफएम एहुं दरिन्ना बदल कुरनी
2: वरं खास हुशेलुं तेरी गेस्ट आरजे
3: गेस्ट आरजे गतुगा बदल कुरा फराता एकु तफात मौलू तका वाहक दक्कानुम के फुर्सत
2: गेस्ट